मेरा मने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म गलाम है काला बाजार के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं यहाँ पे इस गीत बताते हैं, फिल्म के नाम है कुर्बानी। ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों, और हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे। ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है, अनहित पर हित फिल्म।

0: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से।
1: तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।

और आकर दोस्तों महफिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्त, हम हैं जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे। तो आओ सुना जाए, मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ। फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों। और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

भी दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बोल सुप्रीमनियन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है, कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम,
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा दोस्तों। तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत अति स्वेलन हील अवली ची फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जगिल लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं, प्यार भी हमारे

दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल्ड का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से, ये है ये कुछ और फिल्म का नाम है तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

और तू अकेले कभी भाग में जया ना करो दोस्तों, तो बड़ी या लूट से भैया क्या क्या होता है।

महबूबा महबूबा, फिल्म शोले से हमने यहाँ से श्रवण की है। कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते मेरे दोस्त, कि कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते, कुछ नाम दिल

बहुत अच्छा लाइन है, आप जरूर सुने, इसे पसंद करेंगे कि कभी तो की होगी सूरज ने, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत। सुनिए जी,

सूरज में आग है। ये लाइन भी आप सुने, इसे आप भी खुश हो जाएंगे कि दिल में रह कर कि दिल में रह कर दिल पर वार करते हो, दिल में रह कर दिल को पर वार करते हो, जानते हो कि उसमें तुम्हारा ही बसेरा है, कि दिल में तुम्हारा ही बसेरा है, फिर क्यों अपने घर को वीरान करते हो, क्यों

الشيطان. फिल्म साधु और शैतान से सुने हमने ये सुंदर सा गीत महमूद के एक्ट की हुई है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, सुनिए तो जी कि आंसू आ जाते हैं।

से आपके लिए चुन कर रखी हूँ और आपको लेकर चलते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में रातों का राजा फिल्म से निकालेंगे।

अहमद रुश्दी की आवाज में नाता प्यार का प्यार से जोड़िए जी। जो ये कहते हैं कि मोहब्बत है, क्या खुद पर कभी तरस आता है?

तुम्हारे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है। मैं एक शाम चुरा लूं, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।

Sriftum, sriftum, film ka naam, जी हाँ, sriftum film ka naam, और अलका याग्निक जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया जाता है अभी का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। छोड़ दो सब गम और शिकवे, छोड़ दो सब गम और शिकवे, हाँ बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगने लगता है। आप क्या समझे?

एक बार फिर शामिल किया गया है अभिजीत भट्टाचार्य के इस प्रोग्राम में। शोहरत, शोहरत का पैमाना, शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता है मेरे यारों। शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिल पर राज करे वो भी मशहूर होता है।

यस यस यस माय लिसनर, जी हाँ आपने ठीक सुना कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ हाँ मौसम में दस्तूर है तो जरूर से कंवारियां लोग के दिल मचलेगा। संदेश संदेश शिव दीन जी के आवाज में यहाँ से शामिल कर दिया गया है आज के प्रोग्राम में।

ये स्पेशल गीत आपके लिए पेश किया जाता है, स्पेशल स्पेशल चुन चुन कर गीत यहाँ से आपके लिए लाया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों।

इस बार आपके लिए हम सुनेंगे, मिलकर सुनेंगे कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इससे पहले हम यहाँ सुनेंगे ये सुंदर सा गीत, वो सुंदर सा गीत हम अभी के आपके लिए चलाएंगे।

फिल्म क्रांति के ये गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, और नितिन मुकेश जी ने ये गीत को गाया है। और यहाँ पर हमने सुने हैं, हमने सुने हैं शशि सुखा आका बिगामान की आवाज में। कुछ अपना अंदाज, कुछ मौसम का अंदाज रंगीन है, कुछ अपना अंदाज, कुछ मौसम का अंदाज रंगीन है। तारीफ करूं या चुप रहूं, जुर्म जुर्म दोनों ही संगीन है।

दोस्तों, कहे गए हैं कि अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। ये कह रहा है श्री कृष्ण अर्जुन से, तो मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रगत होता रहता हूँ। मित्रों, ये कृष्ण जी अर्जुन से बतलाया। आगे सुनिए, तो जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मित्रों, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सन्मुख प्रगत होता रहता हूँ। मित्रों, ये कृष्ण जी अर्जुन से बतलाया। आगे सुनिए।

मित्रों, परमात्मा आगे कहते हैं कि मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तो मित्रों, भगवान आपको शायद पता नहीं है, मगर पता होगा जिसको, तो वो आपको बतला सकते हैं। और हम तो जानते हैं भगवान प्रतिदिन हर इंसान को कोई ना कोई रूप में दर्शन देता ही रहता है, मगर हम जान नहीं पा रहे हैं ना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी से प्रेम से रहो, किसी को गालियां देख के मत जलो, वगैरह वगैरह, क्योंकि ना जाने किस रूप में मैं वहाँ पर प्रकट हूँ। मित्रों, तो मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। समझो कुछ हो? तो जो मेरा चिंतन करता है, कह रहे भगवान, फिर उसका मैं चिंतन करता हूँ, और जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। वाह, क्या है मेरी परमात्मा। और जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। मित्रों, कितनी सुंदर बात परमात्मा ने कहा है, मगर हम तो विश्वास ही नहीं करते ना। विश्वास करो, भगवान झूठ नहीं बोलत है। जब इस बात उसने कहा है तो करेगा भी ना, मगर तुम्हारे अंदर घुसे तब तो, मित्रों, तब तो।

साथियों, आगे कहते हैं भगवान कि इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से यदि मेरा भजन करते हैं, भजन करते हैं, तो भी मैं उनके उसी कामना को पूर्ण करता हूँ। मित्रों, भगवान ये बात बोलता है, तो जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, मित्रों, इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने का इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। अन्य देवताओं को, मित्रों, तो ये बात समझो और आगे बढ़ते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति।

जैसे हवा की झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है मित्रों। और जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है मित्रों। कृष्ण ये बात बोलता है। तो ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मित्रों, ऐसे भगवान बोलता है। तो मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, ये अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण भगवान। और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत वर्तमान, भूत मतलब ना जुम्बी योरकाने, भूत मतलब फरलेदन तैत। तो मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है मित्रों। नोस मनो साहब में कृष्ण बोले अर्जुन से, मगर मी साहब इधर ही। भाई बहनों, समझने की जरूर कोशिश कीजिए, बहुत गंभीर बात कृष्ण बोला रहा है।

प्रिय भाई बहनों, आगे कहते हैं, समझदार व्यक्ति ध्यान करना, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना प्रसन्न करता है। मित्रों, तो जब आपके घन एक गहरा मित्र जो है आपसे रिश्ता बंद करे, कमती कर दे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ी भाई है मित्रों। और कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, न सही समय, न सही लोग और न कोई चमत्कार, तुम्हें खुद उठना होगा, खुद बदलना होगा मित्रों, और खुद ही आगे बढ़ना होगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और जिस दिन ये बात समझ आएगी, खोपड़िया में बैठ गए, उस दिन से तुम्हारी ताकत किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। तुम अफांकलक दूसरों को नहीं रहोगे मित्रों, ये सही बात है, ये याद कर लेना। अपने बलबूते पे सब कुछ कोशिश करो करने को मित्र।

दोस्तों, भगवान कहते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाओ, जैसे आप बार बार करते हो। हर कोई के दिल दुखा देते हो, बड़ा बात, बड़ी बड़ी बात, वो बिगिता की देख कर कुछ ना कुछ। नहीं, आप नहीं करते, बहुत ठीक बात है, मत करना। ना अंदर हैप्पी एम प्रॉब्लम यो किसमा बिगी प्रॉब्लम। तो कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी की टूट, ध्यान करना, किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। बाप रे बाप। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता है, अपन प्रॉब्लम इंसान से नहीं कहता है, और वही चुपचाप ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वही आंसू मित्रों, वही आंसू के न्याय का हत्या बन जाता है, वही आंसू का हत्या हो जाता है। भगवान ये सब चीज ना फरदरा करे है। तो खबरदार, खबरदार मित्रों, लुगबू अनहैप्पी।

0: रहती है।
1: कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वास्तव में हमारा उपकार ही होता है, क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप कटते हैं।

परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार के सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है।

0: geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम सभी को राम राम करते ही नमस्कार आदाब और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सरजू। जो आज का प्रोग्राम हम आप लोग के करते हैं, कुछ भजन कार्यक्रम हम आप लोग के करेंगे दोस्तों, और सभी को हमारा राम राम। जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचे, हमारा प्यार भरा दुलार पहुँचे, नमस्कार पहुँचे, अदा पहुँचे, हर एक को हमारा दुआ पहुंचे, सलाम पहुंचे और राम राम नमस्कार। पूरा टीम के तरफ से, द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हर एक को राम राम नमस्कार। आज देखा जाए तो भजन का प्रोग्राम है, हम कुछ भजन प्रोग्राम करेंगे। आधा घंटा मैं लेट हूँ और हम भजन करेंगे। एक घंटा का प्रोग्राम है भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप लोग के सुनाने वाले है, और हर एक को एक बार फिर से हमारा नमस्कार हो। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूँ। जो लोग इस वक्त अपने नौकरी पे जा रहे हैं, अपने काम करने के लिए, हर एक को बचा के जाना चाहिए, संभल के जाना चाहिए। जिस घर में दुख है वहाँ पे हम शामिल है, जहाँ सुख है वहाँ भी हम शामिल है, यही हम आप लोग के कह सकते हैं। और हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कुछ भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप मिल के सुनते हैं। शिव मंत्र

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफ़ी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर एक के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। बोल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफ़ी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुने हैं, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवा। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें ऐप द्वारा। सबको हमारा राम राम नमस्कार, अदाए बरसो, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे ढेर सारा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, जहाँ जहाँ पे दुख है, जहाँ जहाँ पे दुख है सुख है, हम पूरा टीम आपके साथ है। देखा जाए तो आज मंगलवार है, देश दाह घड़ी की तरफ देखा जाए क्वाट ओवर आक्त हो चुका है, 520 अगस्त हो चुका है 2026 में हम चल चुके। हमारे सुनने वालों, आप सब चुने फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से, आप सब चुने, मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो अब से लेकर 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। आज का दिन जैसे मैं प्रोग्राम को बनाया है वैसे हम आप लोग को प्रोग्राम को सुनाएंगे। हम कुछ भजन न्यू स्टाइल भजन में आप लोग के ले जाएंगे, न्यू स्टाइल भजन है। और देखा जाए गणेशा का एक भजन मैंने रखा है, न्यू स्टाइल में आएगा, हम सब उसे सुनेंगे और देखेंगे। कुछ रेगे म्यूजिक है, 2026 में इस म्यूजिक को बनाया गया है और गाया भी गया है, और हम आप लोग के सुनाने वाला है। हम सब मिल के सुनेंगे रेगे स्टाइल में एक बहुत ही अच्छा भजन है गणेशा की।

जी हाँ दोस्तों, जय गणेश देवा। अभी आप सुन रहे थे गणेशा की एक न्यू स्टाइल में एक भजन थे जो अभी मैंने आप लोग को सुनाया है। मैंने प्रोग्राम को बनाया है, आप सब जानते हैं हमारा प्रोग्राम में आज भजन चलेगा, कुछ हिले मिले जुलेगी चलेगी, सवाल और जवाब भी है प्रोग्राम, सवाल भी जवाब भी चलेंगे। ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम को बनाया है, जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा घंटे जाएगा वैसे वैसे हम आप लोग के बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे चलने वाला है। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, ढेर सारा पैगाम पहुँचे। नमस्ते लतीम फन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, सभी को एक शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। देखा जाए मंगलवार हो चुका है, 25 तारीख हो गई है दोस्तों, और 3-4 हालफ नहीं का हो चुका है। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, कुछ भजने हम आप लोग को सुनाएंगे। हम आप लोग के लिए चलते हैं भजन शिव का, शिव जी का भजन, शिव भगवान का भजन है। जो भी इस वक्त पूजा पे है या अपना फूल को चढ़ाते, हर एक के लिए ये भजन मैं सुनाता हूँ और भगवान हर एक की पूजा पूरा करे। तद्दूसरी देव मालिक, जहाँ पे दुख है उसे सहन शक्ति दे अपना दुख को सहने के लिए, जहाँ पे सुख है उसे सुख में भी उसका साथ है।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं दुनिया का मैं टुकड़ाया हूँ, बस मेरा हाथ पकड़ ले बाबा। कहता है शिवा से, कहते ही मेरा हाथ को पकड़ लेना। इतना शुभ ऐसे ऐसे भजन सुनने के लिए मिलते हैं, वाह जी खुश हो जाते हैं। मन में अगर कुछ गलत है तो मन भी साफ हो जाते हैं दोस्तों। मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूँ। सुबह सुबह जो अपना पूजा पे ध्यान देते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। इससे बढ़िया बात और कुछ दुनिया में नहीं है। चलो आप ले चलते हैं, कृष्णा के एक भजन सुनाते हैं रेग स्टाइल में।

जी हाँ दोस्तों, ये सब भजन जो बनाया गया है ये सब मॉरीशस का है, आप खुद ही सुन रहे हैं, मॉरीशस का नाम आ रहा है। यहाँ भी लिखा है कि मॉरीशस का भजन है, मिक्स है, और क्या भजन है, अंदाज है, नया अंदाज में अच्छे अच्छे भजन है दोस्तों। ठीक है, हमें चलते आप लोग के देखा जाए शिवा का एक और अंदाज में है।

जी हाँ दोस्तों, कैसे भूल जाऊं भगवान को, यही कहते हैं कि भूल मत जाना, सदा याद रखना भगवान को, उसी में चैन है। जितने ही याद करना उतने ही चैन मिलेंगे। जहाँ पे दुख है, जहाँ पे मातम है, हर एक दुख में हम सब साथ हैं। शिवा उसको इतना सहन शक्ति दे अपना हर एक दुख को सहने के लिए। यही मैं आप लोग के कह सकता हूँ। पूरा टीम फाउन के हमारा जितना को लिखा है, सभी यही कहते हैं हर एक घर में खुशियाँ ला दे मालिक, हर एक दुख को दूर कर दिया जाए और सब घर में चैन सुख दुख निकाल दे भगवान। सुबह का है, आज मंगलवार है, सुबह हो चुका है, मौसम कितना बढ़िया मौसम है। हर एक जो अपना पूजा पे है उसका पूजा स्वीकार कर लिया जाए मालिक। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एक शिवा शक्ति देखा जाए तो एक नया स्टाइल में है, मॉरिशियस स्टाइल में है।

जी हाँ दोस्तों, शिव मेरा पूजा, अभी आप सुन रहे थे शिव जी का एक भजन। ठीक है दोस्तों, हम आखिरी भजन को चलाएंगे, उसके बाद हम कुछ हिले मिले जुले गीत आप लोग की सुनाऊंगा।

जी हाँ दोस्तों, कुछ साईं बाबा का न्यू सिस्टम में था। मॉरिशस का ये जो गाया हुआ भजन है कि अंदाज में गाया है, रिमिक्स में गाया है, और ये सब मॉरिशस का है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताना चाहता है मेरा प्रोग्राम क्या है। अब मैं कुछ फिल्मी गाने आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, जैसे हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ फिल्मी गाना सुनाऊंगा। उसके बाद सवाल और जवाब चलेगा, सवाल और जवाब चलते रहेगा। हम एक सवाल किया था, एक बार फिर से करूंगा, जो सही जवाब देगा और गाने को मांग करेगा, हम गाने ज़रूर सुनाएंगे। आज 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, और इसलिए मैं कुछ और थोड़ा सा मकलक कर दे लो, सवाल पे जवाब दिए तो खल एक गाना आपके लिए चला दूंगा। जी दोस्तों, मेरा सवाल था वट इज स्वार्डर दैन एन हाथी, एगो हाथी से स्वार्डर और कौन सी हैगा। एक अंतर दे दिए तो तू गाना तो के माखेगो हमसे मांगे के। तब तक के लिए दोस्तों हम चलेंगे आज, और आप लोग के बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम करते ही दिनहा शहर से, जहाँ पे ये सरसराहत हवा चल रहा है, मौसम निकसल है, लव बोट ठड़ा है यहाँ पे बगल में, अभी कुछ खाना होना पकेगा। तब तक के लिए तो हम ले चलते हैं फिल्म गुदाई, एको गाना अब हम देख कर लिए बाटी, बहुत मोई गाना है। फिल्म गुदाई नहीं तीन फिर नहीं तक में बनल बा, म्यूजिक बजाई से जगजीत सिंह, गाने वाला है कुमार शानू। किस मौसम में इसमें काम किया है रजेश खन्ना ने, हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं कि ये गाना में कितना दर्द है, और ये गाना सो उमर न गवाने, ये गाना के बारे में अगर आप जाएंगे गूगल पे तो सब चीज़ पढ़ सके है कि कह कती गाना कुमार शानू का, ऐसे रही दे कुंजीबा गनवा के गावत, और कैसे ये गनवा कुमार शानू का ऐसे

जी हाँ दोस्तों, किस मौसम में यार अब तूने ये दिल तोड़ा। फिल्म गुदाई नेगन तीन फिर नेगन तक गाना है दोस्तों। अगर आपको जानना चाहते हैं, इसमें एक रस है जानने के लिए कि क्यों किस लिए कुमार शानू ने इस गाने को गाया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेगन तीन ट्विन सेफ अंतरिक्ष में हमने जाए लो, जहाँ पे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाना को गाया है और हम के मिल के सुनते हैं मैं नदिया की धारा।

जी हाँ दोस्तों, मूवी नाग पंचमी देखा जाए, इसका जो म्यूजिक बजाया गया है रवि और लाइरिक से इंदिवर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इसमें काम किया है पृथ्वीराज और जयाश्री। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलते हैं, कुछ ऐसे गाने मैंने सोचा है, देखा है और अच्छी अच्छी गाना है, बहुत ही पुराना गाना है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के, जिसपे फिरोज खान काम किया है, चित्रगुप्त म्यूजिक को बजाया है, मजरूत सुल्तानपुरी का लायरिक से, और मूवी का नाम है ऊंचे लोक, निकतिन फैफन सस्तक का है, जाग दिल ए दीवाने, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, जा गए दिल दीवाना। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज अभी आप सुन रहे थे मूवी उच्च लोक देखने थी फैफन सस्त का है पुरस्कार। इसमें काम क्या है, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज, चित्रगुप्त का म्यूजिक और मजूद सुल्तानपुरी का ये लाइरिक्स। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं तो हम कुछ बंधन में बन चुके हैं। ऐसा बंधन है, भाई बहन का बंधन है, जो रक्षाबंधन है, दोंदरदाख के आने वाला बिफे के रक्षाबंधन है दोस्तों। जहां भी भाई बहन है, जितना दूर भी है, उस दिन जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए और रक्षाबंधन को बहानिए बनवाइए। जितना ही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, रक्षाबंधन को बनवाइए। इसलिए मैं एक गाना रक्षाबंधन के भी ढूंढ के रखा हूँ, खोज के रखा हूँ। मूवी रेशम की डोरी का है, नहीं कहते फिरन सीफन तक का है और हम सुनाते हैं, हम भी सुनेंगे। क्या क्या मस्त गाना है, भाई बहन का नाता है, हर एक बहन हर एक भाई जो इस दुनिया में है आपस में ज़रूर मिलेगा। और ये आपस वाला गाना है, रक्षाबंधन का गाना है।

हमेशा की तरह बिफे के भी भैया के कलाई पे रक्षाबंधन बहाना जाएगा। जेबी थाम के रखना, अपना दीदी को खुश रखना, हर एक बहन को खुश रखना। और रक्षाबंधन आ गया है, द्वंद्वता की रक्षाबंधन है हमारे सुनने वालों। और हर एक बहन और भाई का नाता रक्षाबंधन से बनता है और सदा बना रहेगा, क्योंकि रेशम की डोरी से भी आपने सुनी है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, भाई की कलाई पे बस राखी बांधा है। ठीक है दोस्तों, हम ले चलते हैं झूठा सावन देखो आया, झूठा सावन देखो आया है। दो खिलाड़ी नेकन तीन सेशन सीफन तक का है, सिंगर है पद्मश्री मोहम्मद रफी, म्यूजिक है उषा खन्ना। और आप लोग के सुनाते हैं क्या गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है।

जी हाँ दोस्तों, बरखा ने प्यार बरसाया। कहते हैं झूम का सावन, देखो बरखा ने प्यार बरसाया, लेकिन आज का मौसम तो बहुत घाम है यार, इसलिए घाम ने प्यार बरसाया। दो खिलाड़ी नहीं कहती ससन सैफ तक आए, सिंगर पद्मश्री मोहम्मद रफी उषा खन्ना का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा फिल्म को मैंने रखा है, होली आई रे नीकंतीन सैफन तक का है, जिस सिंगर है किशोर कुमार, प्रकाश तपा और माला सिन्हा ने इसमें काम किया है। कल्याण जानन जी का म्यूजिक है और उमार जालालाबादी का लाइरिक्स है। कॉमेडी है, थोड़ा कॉमेडियन गाना है दोस्तों। आज मंगलवार है, बढ़िया वेद है, अच्छा सवेर है, मौसम है, सरसराहट हवा चल रहा है और देखा जाए क्वार्टर 3 हो चुका है। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे दोस्तों। और जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब अगर आप देते तो गाना को मांग सकते हैं, आज नहीं तो फ्रेदा के आगे हम चलेंगे। What is swarder than ain only fun? Ego हाथी

मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। ओ मेरी

हाँ दोस्तों, कुमे दी नंबर था, होली आई रे निकंती सैफन तक का ये गाना था। चलो दोस्तों, चलिया बाबू हम ले चलते हैं निकंती सैफन तक में, जिसमें रेस करना सीना तमन ने काम किया है, किशोर कुमार की आवाज़ है। और देखा जाए हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का लाइरिक्स भी है।

0: 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे न्यूज और रेखलाम। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए चलते हैं नेखन तीन दरियन ताख तक में। देखा जाए मूवी महान, प्यार में दिल पे मार दे गोली। अमिताभ बच्चन, जीना तमन, किशोर कुमार, आशा भोसले का आवाज है, एयर दे बेरमन का म्यूजिक है। हम आप लोग सुनाते हैं

जी हाँ दोस्तों, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, मूवी महान नेखन तीन त्रियन तख्त का अमिताभ बच्चन, जीना तमन, किशोर कुमार, आशा भोसले का वास, एर देवी बर्मन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, चलो हम आप लोग के लिए चलते ही, आइए जावन झूम के नेखन तीन नेखन जीवन तक के, और लता मंगेशकर पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, लाइरिक से आनंद बख्शी, धर्मेंद्र, आशा परेख, अरुणा ईरानी ने इसमें काम किया है। हम आपको सुनाते हैं नेखन तीन नेखन जस्तक का एक बहुत ही पुराना गाना है,

जी हाँ दोस्तों, आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। मूवी नीकंती नीकन सस्त का लता मंगेशकर पद्म से मोहम्मद रफी का आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, लायरिक्स आनंद बख्शी। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, जाने कैसे कब कहाँ। मूवी शक्ति, फिल्म शक्ति से गाना मैंने निकाला है, नेकी दिन ट्विन तख्त का है, सिंगर है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है एर दे बर्मन, जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी और स्मिता पटेल ने काम किया है। चलो हम मिल के सुनते हैं, आपको भी सुनाते।

जी हाँ दोस्तों, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गए। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते ही एक बार फिर से हम याद दिलाते हैं कि द्वंद दाख के आने वाला बिफे के रक्षा बंधन है। दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि हर एक भाई बहन का जो नाता है वो द्वंद दाख के आएगा बिफे के। छोटी बहना नेहंती नेहन फेफ तक के एक रक्षाबंधन का नाम आपको सुनाते हैं। फिल्म छोटी बहना नेहंती नेहन फेफ तक का है, लता मंगेशकर का आवाज़ है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं एक बार फिर से क्योंकि द्वंद दाख के रक्षा बंधन है, राखी का दिन है।

जी हाँ दोस्तों, भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना। इस फिल्म में बलराज स्वामी ने काम किया नंदा। चलो दोस्तों, आगे ले चलते हैं। आज रपट जाए तो अमिताभ बच्चन और सुमिता पटेल, किशोर कुमार की आवाज़ है, आशा भोसले साथ है और नमक हलाल है निकलती त्वेन तख्त का मूवी है फिल्म। पप्पी लहरी का ये म्यूजिक है, अनजान का लाइरिक्स है। दोस्तों चलो हम सुनाते हैं आज रपट जाए तो हमें क्या।

0: आज फिसल जाए
1: जी हाँ दोस्तों, आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो। फिल्म नमक हलाल का ये गीत है, लेकिन दिन ट्वीन तख्त का है, किशोर कुमार और आशा भोसले का आवाज, पप्पी लहरी का म्यूजिक है, लाइरिक से अनजान। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। फिल्म मूवी कंगन नेखन तीन त्वीन सीफन तक का है, झुकी तो तेरी नैना। देखा जाए तो संजीव कुमार इसमें, संजीव कुमार माला सिन्हा इसमें काम किया है, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का आवाज है, म्यूजिक सदा जैसे सदा के लिए कल्याण जी आनंद जी है, और अनजान का लाइरिक से हम आपके सुनाते हैं। कुछ पुराने गाने हैं लेकिन बहुत ही अच्छा गाना है महेंद्र कपूर की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, झुके जो तेरे नैना, संजीव कुमार, माला सिन्हा, महेंद्र कपूर की आवाज़ और उषा खन्ना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं सवाल एक बार फिर से पूछता हूँ, क्योंकि फ्रेदा के हर एक को, हर एक के गाना को मैं फरमाइश समझ के सुनाने वाला हूँ। आज नहीं चल पाएगा क्योंकि वक्त नहीं है। आने वाले फ्रेदा को, हर एक को मैं, हर एक के जो सही जवाब पे, सही जवाब को दिया है और हक बनता है गाने को मांगने के लिए, तो फ्रेदा को हम ज़रूर आपके गाने को सुनाएंगे। काफ़ी लोग हैं जो अच्छी अच्छी अंतोत को दिया है, सही हल को दिया है, और फ्रेदा को हम आप सबके गाने ज़रूर सुनाएंगे। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, What is swarder than ein? हाथी। एगो हाथी से और हेवी कौन जीवा? एक अंतोर दे दिए, धीरे धीरे दे चुका अंतोर, लेकिन कह कत हम गाना ना दाय कर लो, जब हम गाना दाय कर तब हमें अंतोर बोले परी, हम तरह स्पानिंग में पकड़ ली है, तो फ्रेदा तब तक के लिए हम चलते हैं, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़, रेस खन्ना, सिना तमन इसमें काम किया है, और मूवी है अजनबी, नेगा दिन फिरन सैफन तक का है, म्यूजिक है एरदे बर्मन और लायरिक से आनंद बक्सी।

जी दोस्तों, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। मूवी अजनबी नहीं कहती, फिरन सीफन तक का है दोस्तों। और चलो, हम आप लोग के सुनाने वाले हैं, अब और कुछ सुनाएंगे। एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम न्यूज़ और बयाम लेके आएंगे आपके साथ।

जी हाँ दोस्तों, यार की खबर मिल गई मूवी राम बलराम आशा भोसले किशोर कुमार के आवास लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक आनंद बख्शी का लिरिक्स। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, याद फिन दिलाते हैं आने वाली बिफे और सुख के। रक्षाबंधन है, राखी का दिन है,

0: जी हाँ दोस्तों, राखी का अनमोल धागा आ गया है। तुंत दाख इनफ्राई दाख के रक्षा बंधन है दोस्तों। जी भी थाम के रखिए, दिल थाम के रखिए। जितना भाई बहन है, बहन ज़रूर भाई के घरे आएगा या भाई बहन के घरे जाएगा। बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही अच्छा दिन है। रक्षा बंधन एक ऐसा बंधन है कि बहुत ही अच्छा भाई बहन का नाता सदा बने रहे और ऐसे ही बनना चाहिए। जिस द्वंद्व दाखिल फ्रैदा कसन हेल खुदाख भाई और बहन का नाता है। दोस्तों याद दिलाता हूँ फिर से, भूल मत जाना, दोष मत देना कि अनिल सार्जुन ने याद नहीं दिया था। मैंने आपको याद दिला दिया है। द्वंद्व दाखिल फ्रैदा बहुत मई दिन है और अच्छा बंधन का दिन है। तब तक के लिए हम चलते हैं, देखा जाए कहाँ चलेंगे। हाँ यहाँ चलेंगे, मिल के सुनते हैं।
1: देखने वालों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करते
2: हैं। ये क्या कर रहे हो?
1: फूलों की डाली में चुभ रहा हूँ।

जी हाँ दोस्तों, मान जाइए मूवी हिम्मत, पद्मश्री मोहम्मद रफी, आशा भोसले का आवाज, जितेंद्र मुमताज का ये इसमें रोल था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं एक बार फिर से मूवी संजय नेकनदीन नेकनन शस्त्र का साजन। हाँ, साजन है नेकनदीन नेकनन शस्त्र का, लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का लाइरिक्स है, मनोज कुमार और आशा परेख इसमें काम किया है। आप सब भूल मत जाना कि आप सब चुने द एफग्री लव द लव फॉर हिंदुस्तानी रीति, उसे आप सब चुने दोस्तों।

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी साजन नेकंती नेकना जस्तक रेशम की डोरी हो, देखा जाए लता मंगेशकर और पद्मा श्री मोहम्मद रफी का आवाज और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और लिरिक्स आनंद बख्शी, काम किया है मनोज कुमार और आशा परेख ने। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए चलते हैं, पूछो तो कोई मुझसे, आई आप आए बाहर आए, राजेंद्र कुमार और साधना साधना। ठीक है दोस्तों, देखा जाए और पूछे तो कोई मुझसे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, पद्मश्री मोहम्मद रफीक आवाज है, आनंद बख्शी का लिरिक्स है। नेकन तीन एन सेफन तक का ये फिल्म है और गाना भी।
1: पूछे जो कोई मुझसे,

पूछे जो कोई मुझसे जितेंद्रा रजत कुमार और शाहधना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ आनंद बख्शी का लायरिक्स और आइए आप आइए तो बाहर आइए नहीं कहते एन जीफन तक का है दोस्तों। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं कुछ पुराने गाने में जो शायद आप लोग अभी नहीं सुना है। आन मिलो सजना नहीं कंतीन जीफन तक का है लता मंगेशकर पद्मश्री मोहम्मद रफी।

जी हाँ दोस्तों, आन मिलो सजना निकटिन ज़ईफ़न तक का है, जो भी आपने सुना है दोस्तों। ठीक है, हम आप लोग को ले चलते हैं, देखा जाए इंतकाम, इंतकाम मूवी इंतकाम निकटिन निकटिन सस्त का। और सॉन्ग से हमें तुम्हारे लिए लता मंगेशकर, पद्मश्री, मोहम्मद रफ़ी और राजेंद्र किशन, इसका जो लिरिक्स से लिखा गया है वो राजेंद्र कृष्ण है। म्यूजिक आप जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है दोस्तों। मिलके सुनते हैं।

Ja, दोस्तों, इंतकाम 1969 का है हम तुम्हारे लिए, लता मंगेशकर, पद्मश्री, मोहम्मद रफ़ी, राजेंद्र कृष्णा का ये लायरिक्स है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये म्यूज़िक, संजय खान और साधना इसमें काम किया है दोस्तों। चलो, हम आपके बताना चाहते ही 20 मिनट और बचा है हमारा तुम्हारा साथ, फिर मिलेंगे हम फ्रेडा को, अभी हम रहेंगे क्योंकि अभी 2-3 गाने हम आपको और सुनाएंगे, उसके बाद न्यूज़ चलेगा, कुछ रिक्लाम हो, उसके बाद हम विदाई ज़रूर आप सुनेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं मूवी दर्द, निकन तीन एनम तख्त का म्यूज़िक, कयामत कयाम जो म्यूज़िक को बजाया है और लायापुरी का लायरिक्स से दोस्तों, लता मंगेशकर का आवाज़ हम आपके सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। चलो दोस्तों, हम एक आखिरी गाना आपके लिए पेश करता हूँ। दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू रे, लता मंगेशकर की आवाज है। देखा जाए, आप सुनेंगे, उसके बाद हम न्यूज़ बयान, न्यूज़ और रखराम की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम विदाई जरूर लेंगे।

0: जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे, लाचारे, तंदुरुस्ती, दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा, और कुछ घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। चलिए, हमने गीत रखे हैं रफ़ी साहब और लता जी की। रफ़ी साहब और लता जी की जीगी रखे हैं, और वो दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं, आपने कभी सुने हैं कि लता जी और रफ़ी साहब दोनों लड़ते कैसे हैं? तो चलिए हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से वो लड़ते हैं।
1: चल शौक दीदार है,

0: hello, hello, hello, hello, hello.
1: उसने तो तार रख दिया। जी हाँ, हमने शुरू में कहा था लता जी, लेकिन नहीं आशा जी, रफ़ी साहब, आशा जी की ये लड़ाई हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्लेयर में। हमने एक गीत रखे हैं और वो गीत जाना पहचाना गीत है, अलका याग्निक की लाइफ। अलका याग्निक की लाइफ प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे इस तरह से, अलका याग्निक जी लाइफ।

वर्ल्ड फिल्म थिएटर यानी कांग्रेस का वो उन दिनों नाम था 2001 का ये लाइव कार्यक्रम अलका याग्निक जी की हम आपको सुनाएं।

साथ दी है लता जी रफ़ी साहब के साथ, फिल्म ताजमहल में से निकाले हैं रोशन के साथ पर आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बस चलो सुनते हैं आशा जी। आशा जी बस अब बच के कहाँ जाओगे, फिल्म यकीन में से शंकर जयकिशन के साथ है। फिल्म यकीन है निगति निघ्न शस्त्र का 1969 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

बच के कहाँ जाओगे आशा जी की आवाज में आपको हम सुनाए हैं शंकर जय किशन के साज पर। आजकल तो सिर्फ ऐप आता है और कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ख़त का ज़माना ही चला गया। ख़त सिर्फ ब्लास्टिंग कंट्रोल का आता है या सिकोफोन्स का या कोई इंस्टांसी सा, लेकिन परिवार का ख़त बहुत कम आता है। सब कुछ तो ईमेल से होता है, ऐप से होता है, टेलीफोन से होता है। क्या ज़माना आ गया। चलो हम आपको ख़त के बात करते हैं प्यार में।

ये वो ज़माना का दौर था जो ख़त लिखे जाते थे और तकिए के नीचे रख कर सो जाते थे। बहरहाल रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं कन्यादान में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले वही ट्विटर से नहीं, इनका लाइव कार्यक्रम। जी हाँ, लाइव कार्यक्रम कांग्रेस खबाओ का यानी वर्ल्ड फ्रीडम ट्विटर का ट्विटर से इनका अलका याग्निक जी आपको सुना रही है।

Alka Yagnik Jiki live voor Grama. World Forum Theater Yane Congres Kaba Undino 2001 ka Hamne Nikal Kar Aapko Sunaye. Chaliye Evergreen Kishore Kumar. Evergreen Kishore Kumar keh raha hai apne saathi se ki kya kiya jaye. Chalo darya mein doob jaye, kood jaye, mar jaye ya tair kare. Chalo sunte hain inhi se kyunki main to bhul gaya ki in logon ne gaaye kya hai. Bas मैं भी सुनता हूं, उम्मीद आप भी सुनते होंगे और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर. तो सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, डूबने की बात, मरने की बात या तैरने की बात है.

ये खो जाए हम, ये तो नदी में ढूंढने की बात नहीं की है लेकिन एक हो जाने की बात की है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, फिल्म कर्ज तो आपने देखे ही होंगे। जी हाँ, चलिए कर्ज में से निकाल रहे हैं।

उदित नारायण जी और अलका याग्निक मिलके आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाओ हिंदुस्तानी रेडियो पर आप ट्यून हैं तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.fawnfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं, एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकालकर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यारी मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा है, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है। वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं राहत फतेह अली खान।

0: क्या बात है, राहत फतेह अली खान और सुसाना मिलके आपको सुनाए हैं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Oh.

दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ी की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी और राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगे रोएगे दुनिया या हंसेगे दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सी बंद का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्म में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 405 तक या 55 तक, बहरहाल रोंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिए हैं।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीब तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं के सिलसिला हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफ सैफ दख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

कि मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म निकली थी, तो ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश की आपके लिए, सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है, जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरी है ना, जो आजकल चल रहा है, उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिजदार शस्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश किए फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त खयार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव सेवन पे इफ्तखा ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूँ, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव सेवन पे इफ्तखा में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था, ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया, पर चलाया गया सूरीनाम देश में नेगेटिव सेवन एंड फाइव तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्रा दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है 1983 साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटन में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 टेटन में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम इंटरनल पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकती फैफ से ही का ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आर डी बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो अच्छा दिखा तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं नेक तीन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

0: मेरी बुलबुल जी हाँ पैसा मिलेगा एवरग्रीन किशोर कुमार ने कितनी फिर से फिर का ये फिल्म रोटी में से निकालने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर.
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

आप ही कहा हैप्पी स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दोस्तों तेरा नाम का दीवाना, तेरा नाम का दीवाना क्या ढूंढते हैं, फिल्म सूरज और चंदा का सॉन्ग है, आप खुद सुनिए राफी साहब की आवाज़ में।

0: राजीव कुमार का फिल्म सूरज और चंदा का सॉन्ग अभी आपने सुना, संजीव कुमार जिसे हेमा मालिनी से प्यार था। दोस्तों, संजीव कुमार हेमा मालिनी के बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी संजीव कुमार को नहीं चाहते थे। तो इसी बात के कारण संजीव कुमार ने फिर कसम खा ली कि वो कभी शादी नहीं करेगा, और बिन शादी शुदा आदमी का मृत्यु भी हो गया, कभी नहीं शादी किया। फिल्म जी हाँ दोस्तों, फिल्म जो मैं जो फिल्म का जो सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हुई है, अलका याग्निक का गीत है जो सोनू निगम के साथ गाया है, पंछी नदिया पवन के झुंडे। हम सब मिलकर सुनेंगे।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छूकर।

की बार जो सॉन्ग मैंने तैयार करके रखा है दोस्तों, सोनू निगम का गीत है। सोनू निगम एक गायक जो गसल भजन राफी साहेब का गीत कितना बनाया, कई एल्बम भी तैयार किया वगैरह वगैरह। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि सोनू निगम का को पद्मश्री का पद्म मिला, जो मैं आपसे कहूँगा पद्मश्री सोनू निगम के आवाज़ में आप सुनेंगे। मैं अगर कहूँ

दोस्ती दोस्ती कमाल की होती है, दोस्ती कमाल की होती है, जिसमें वजन तो बहुत होता है, जिसमें वजन तो बहुत होता है लेकिन बोझ बिल्कुल नहीं। और वक्त तो हम जीत नहीं सकते, वक्त तो हम जीत नहीं सकते, वक्त से सिर्फ सीख सकते हैं।

0: लम।
1: वाह वाह, क्या सॉन्ग आपने सुना दोस्तों। श्रिया घोषाल के मीठी आवाज में अभी ये गीत चला। फिल्म जीत का गीत मैं तैयार करके रखा हूँ। फिल्म जीत में सोनू देओल करिश्मा के साथ काम किया। जब मैं सोनू देओल का नाम लिया दोस्तों, तो आपको मानना चाहिए कि सोनू देओल तीन लड़कियों के साथ खेल कूद कर और चला गया। पहला था अमृता सिंह, फिल्म बेताब में ये दोनों का प्यार हुआ, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर भी सोनू ने पीठ घुमाकर और अमृता सिंह को छोड़कर चला गया। उसके बाद फिल्म के दुनिया में या फिल्म के मैदान पर प्यार मोहब्बत हुआ डिंपल कपाडिया से। और डिंपल तो उनका शादी हो गया था राजेश खन्ना से। फिर भी ये दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था।

करिश्मा के साथ काम किया है सोनू डियोल, और आप जानते हैं सोनू डियोल जो है वो धर्मेंद्र का बेटा है, और धर्मेंद्र तो सिर्फ हेमा मालिनी के साथ खेल कूद किया और एक दो लड़कियों के साथ, तो लोग कहते हैं कि बास के जड़ में तो सिर्फ बास ही पैदा होता है।

सोनू निगल की कहानी मैंने आप सभी बताया दोस्तों, लेकिन उसका पिता वो ही किसी से कम नहीं था, धर्मेंद्र दोस्तों, टॉप एक्टर उन दिनों का। फिल्म आया सावन झुमके में, इस फिल्म में जो निखिली निखिल शस्त्र में रिलीज हुआ, काम किया और वो भी आशा परेख के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक है और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सुनेंगे ओ माजी चल, ओ माजी चल।

first शाहरुख खान, अब जब मैं शाहरुख खान का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि ये एक बड़ा एक्टर है और यूही चावला के साथ काम किया, शिव हरी फिल्म का नाम है और नहीं फिल्म का नाम है डर फिल्म का नाम है और उदित नारायण वो भी उन्हें भी पद्मश्री का पद्म मिला है दोस्तों, पद्मश्री उदित नारायण के आवाज़ में आप गीत कर सुनेंगे जादू तेरी नज़र।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत बहुत बड़ा काम की चीज है। तो घड़ी को देखा जाए तो 5:30 बज चुका है, मंगलवार की शाम के प्रोग्राम है। अभी आप लोग राजा द्वारकम से प्रोग्राम को सुना है। यहाँ से आधा घंटा कुछ मिली जुली गीत 6 बजे अभी आप लोग को हम देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। याद रहना।

और मोहब्बतें बहुत बड़ा काम की चीज है। तो आप लोग को बता दी दोस्तों, आने वाला धोंदर दाख को, आने वाला धोंदर दाख को हम सब शुरुआत करेंगे लाइफ करोगे जोंग रेडियो फाहोन करोगे ग्रुप यहां पर, और शाम को करीब 7 बजे हम सब शुरुआत करेंगे। यानी कि पहला बार है तो हम सबके कुछ टेक्निश काम भी करना पड़ेगा यारो, और आप लोग जानते हैं टेक्निश काम में कभी कभी गड़बड़ी जरूर होता है। वैसे दौर ऑफ खुद फॉर ब्राइट, और हमारा प्रोग्राम में भाग लेने वाला है हमारा जो यानी कि कोच है, बड़े भैया कोच जो भैया गंगा जी है, तो गंगा जी कोच करेगा। साथ साथ भैया द्वारका है, राज द्वारका रहेगा, संता रहेगा, हम रहेंगे, और ऐसे हम सबका प्रोग्राम रविवार को यानी कि नहीं रविवार को दौंडा डाक को हम सब अपना करो कर प्रोग्राम को चलाएंगे। दिस आप लोग याद रखना, याद रखना कि हम लोग का लाइफ कारखोख ग्रुप जोन फाहुन का है, हम सब लाइफ रहेंगे। हमारे यारो और कुछ मिली गुली जीत आप लोग को आधा घंटा सुनाएंगे, उसके बाद में हम सुरिनामी देश के ओर हम बढ़ जाएंगे।

दीवाना हुआ पागल, नॉक्सेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते हैं गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग, मैं से मीना से नशा की डिलीवरी कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

0: तो दोस्तों हम चलते हैं रेक्लाम के ओर। रेक्लाम के बाद में अभी हम देश और विदेश की समाचार लेकर आ जाएंगे।
1: लाइव रंजन हाथ वाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

Καλά να γιάνει ούτσινιτς, καλά να γιάνει γιάτς, ορστιμάτα DJ, χαμκο απνί αζιρμάντε. तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाम सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी हम आ गया है रेडियो उफाहन में और आज भी आप लोग को हम पूरा पूरा सूरीनाम से लेकर और अन्य देशों की सफर को कराएंगे और करा कर ये घंटा

Jonki, ते ये पेरोल मसे फुरुक्तुर उक्तु तूर के और जाई के बेचत रहा वही से अपन मलिया कीनत रहा, मलिया कीनत रहा जाने फूंके वाला तो। और काम बोले है सुनो इफी नो इफी करे वाला भैया जुनकी रहा। बताए गए है ये ब्रेन हार्ट स्ट्रांड के बात है और सोमवार के ये आदमी पेड़ पे चढ़ल है तो ये पेड़ पर से गिरल है भैया, ये आदमी गिरल है और गिरल है एगो स्केटिंग पे गिरल है भैया। हाँ मौसी एगो स्केटिंग पे गिरल है मुखलक है और स्केटिंग वहाँ पे गिरल है और ये आदमिया मर गए है। मैं ब्लैक भैल है नानी, ब्लैक भैल है जैसे बतावे है बकेंद ड्रग्स फर्सलाफ्द एन फरकोख्त फ्रिक्तन इन द बीर्ड। और बतावे है सिपाही जे गैल है तो बोले मोखलक है ई बोले है पेड़वे पीकर हार्ट रुक गे रहा ओम द स्वार स्वार ओफर दोसीस दोसीस मतलब कि दृक्षवा बहुत हेवी वाले रहा अब पेड़वा चढ़ल हुए पकर हरतवा रुक गे तो गिर गे दोस्तों तो सब सोची गिरे पे मरल है लेकिन वो गिरे पे ना मरल है बोले ऊपरे मर हो गए। या एक बारे में बतावे है इनखस्काकल आर्टस्टल खींच एक बार फरवोंडिंग op het lichaam vast. Het vermoeden bestaat dat deze NP in de boom als mogelijk als gevolg van een overdosis een hartstilstand kreeg en vervolgens naar beneden viel. To abadeko bhaiya hamne jani kai ni kya nidi kaunchi bhaiya दुई तरह से बन गया ना से काबले स्मोकल करी से सरनाम में ई कौनी कौन तो दृशी भैया कहनी है कि कौन ची है। दुई तरह सभन सभन काम बोले है एक स्मोकल करी से भैया सूरीनाम से गयाना से तो बताए गए है त्रक रुक में लदान है। ये एगो खेमिस प्रोडक्ट है भैया आप करवाने में हम बताए ये कौन ची है। ये एगो खेमिस प्रोडक्ट है सेर क्रख्त स्नेल वर्कन द खेमिक स्टॉफ इन द एक्सट्रीम गिफ्टिग एयर फॉर मेंसन एंड दीरन। हर ब्लॉकेर द आदमहाली फॉर द सेलन वार्डोर लेखाम खेस स्टॉफ मेर कान खबर आइकन इतना खफार चीज सबन ओके गयाना से हबड़ा करी से और एक के सब का करे से सोना खोजे भैया और यही सब चीजों सबन सर मक्का फ मक्का बिगी सो यहाँ उतरा मछली मर गए हैं। इंडस्ट्री बोले हेट वॉर खबर इन मेटल एंड खीमिस इंडस्ट्री बे फूड बिल फॉर हेट विन इन फन हाउ था और बोले हेट वॉर फ्राई बेड फॉर ब्रांडिंग फन कुस्ट ऑफ सोवास PVC जरियत यही सब चीजों मिले भाई। तो हम बता दिली तरी से कर बारे में हम खोज ली कौन ची है हमें तो मालूम ना रहा मैं बहुत खफार चीज है। तो एक एक गयाना से सबन स्मोकल करके लाई से सूरीनाम में ब्लैक बार है सोना खोजे के अतुल जाने यही सब चीजों पुलिस ब्यूरो में से कंटेनर चोरी भेल है आज तक पता ना मिलल कहाँ गेल है। तो अब इकिया गयाना से स्मोकल भैल और गयाना में दुई गो भैया तुरक लात के चिजुआ अब जातरा पारा मारी बहू तो लोन जाने हो एगो जगह का नाम बा चिजुआ हबड़ा भले ब्रंज साइट में भैया तुरक बे ब्रंज साइट हुआ पे सबन दुई टन फरमुडलक खीमिकाल ये मुआ सबन पकड़ी से और बोले है ब्रिन साइट में तो लोन जाने हुआ कोरोनी के हुआ पे जाने सबको ये निकेरी जाए आवे हैं तो जे के उस सब मांगे रुकावे भैया लेख दिमासिया सीताके हैं और एनक रास्ता है जो गयाना से और कोरोनी से परमारी बहु जा हैं
અને મતલબ કે નિકેરી છે, દિસ ગયાના સે નિકેરી, નિકેરી સે કોરોને કોરોની, કોરોની સે સરમક્કા, સરમક્કા સે દફીનો શહર ચાલ જઈયો. તો ઓકે હું આ કોરોની કે બ્રંજ સાઇડ પર રુકાઈ છે ઓર હું આપ પે 2 ટન સબર પાઈ છે મટીરીયલ ઓન ધ સ્કેપ બોલે ઓર બોલે ધ પાર્ટી વેટ મે 2 ટ્રક્સ ફોર ફૂડ એન્ડ સો ફાર.

op illegale wijze Suriname zijn binnengebracht. Waar de truck wat is eigenlijk aan het verjaar de boot op de Finland aan hoe op het eigen de laden zijn gemaakt van een aanmeersteger in Nikeri Mego ego steger ze van manier gaan hoe heb ze van ietsje wat laden gaan van daaruit zou het materiaal over de weg verder zijn vervoerd op het totdat de trucks bij de controle plaats van Brutak Nikeri ze tje gebracht hoe je de brun site bij je school toen naar het verjaar die malia gebracht hoe je de Nikeri ke oude en सिपाही हुआ सोना पाइसे किनी केरी में का हुए हैं और बोले इन्फॉर्मांट इस युवक बारे में तीन मिला पकड़ान है जो ट्रांसपोर्ट करता ची युवा भाई दवाइया बोले ना ऑन द स्केपिंग साउस है आंख की फन की बोले हैगा लदिंग वास अब ऑन द सुख हुएगा और बोले प्रोडक्ट भी ऑन द सुख हुए कि कैसे है तो एक बारे में बोले और दही लिखाई थोड़ा बोले ओक वो ऑन द सखवार है मटेरियल प्रसिस फंदान एस क्यों कहाँ से आयल है ओ पिछवन खोजे है हमारे मौसी तो ये बात है सूरीनाम के हमारे जनता हमारा सनाम किसी पाई रोदा लेस पे भाई रोदा लेस पे ना सब भैया इतना बनमासी होवे इसको उतुलन करे हुआ भैया कि परासी में से क्वेक क्वेक चोरी हुई गए अब देखिए कुछ सिपाही भीन पकड़ान है मौसी बहुत बेजती के बात है हमारे सूरीनाम के स्कूतु के हमारे सूरीनाम के स्कूतु के बड़ी बेजती के बात है ना सबके बोली लामा बड़ा ढेर हो गए भैया एगो तो बोली एगो रोता आपल हो सके मार बोलेगा ऐसे मेयर रोता आपल हो गए भैया तो यहाँ बतावे है कि ट्रॉली जाने को जो भैया दुई गो ट्रॉली फॉल भैया गांजा भर के और एगो सिपाही भैया सिपाही 40 किलो भैया गांजा एगो कॉफर बाग में लाद के एगो बीस में ट्रॉली में अपू यात्रा पारा मारी बो वही के कोली हुए ढल्ले स्कूतुए के पकड़ी से वही ब्रेनजाइट पे भैया जहां पे सबन पुलिसी पोस्टवा है वेस्टर्न फांसरी नाम निकेरी के हुकुआ पे द पुलिसी वेट सेट एकन कोली खास आन कहोदन ना दात इन द कॉफर बाग फांसे ऑटो ट्वी ट्रॉलीज में इन टोटल 40 किलो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहा हमारी जनता तो हमारा देश बड़ा ज्यादा भैया तो हमारा मनोरथ जो है मिनिस्टर फॉर यूसिन पॉलिसी बोले नो टेस्ट मी बाकी ओकर सिपाही नहीं के टेस्ट करे और भैया हाथ मैल के रह जा थोई मनोरथ कुछ कर ना पावे है हेड हाथ ओमेगो अख्तन दर्द के यार के सिपाही है ट्वेडा क्लास के बोलेगा दी इस द वर्क स्टेल ऑफ ए पॉलिसी ब्यूरो फॉर ग्रोनिंगन उ ग्रोनिंगन के सिपाही रा भैया शर्मा का के हां शर्मक्का ग्रोनिंगन के सिपाही रा भाई फॉर नो मन वर द पुलिसमैन सो मार के निकेरी से उनको रोनी गेल है और हुआ सबन ओके पकड़ ले से 40 किलो गांजा से और अपन ट्रॉली में धल्ले रा के जैसे कोई हलाल त जा फकांसी से जा भैया कपड़ा लत्ता ले के दुई ट्रॉली कोफर बाग में धल्ले रहा अपी भैया के नरकोटिक ब्रिगेड पकड़ के ले गए है दुर्गा के बारे में बाकी भाई हम का बोली हमारा प्रेसिडेंट जो देश के है और वो है प्रेसिडेंट सिमोन तो अपरे भैया बड़का बड़का लुटेरा जो हमारा देश के चोरी करके और हमारा कास्क सर्फस जो दोन करी से ओके खरास सीद करे भैया ओके बचावे है चोरन के अबे देखियो हुदरात के भिने ले आवे तो ये छोटा छोटा सिपाही दुई स्त्रेपी के है वो कौन खेत के मुल्ली है प्रेसिडेंट ये मुतखुय फोरबेल सैन मन तो ही पोडियम पे बोले रहले कि चाहे हमार एनमी चाहे जेकर एनमी है बोले जे तू स्ट्राफ वारा फेट कर लिए द मुझे बेला ओएम खान बोले हम तो के लीफर कर ओएम के और अपरे गैल हैगा तरक के छोड़ाई से और इतना सिपाही लोन हैगा जो इधर उधर बनमासी करे है और पकड़ा है हमारे जनता तम बोली अबे हम मनोरथ के ना छोड़ो मनोरथ भैया तू का करे है अब भैया हुआ के अंदर नीमर जो सूरीनाम में है अब रात के ना सूद पावे है नानी
कितना लुटेरा देशवा में हो गए हैं, जहें देखियो रूफ होवे ई होवे ऊ होवे तो ऐसे वांछित है। 3 और 4 बजे सवेरे के बाद है हमारा आनी शनिचर और अतवार धरियंत्विंतक और ख्रिस्तस के बाद है। एक घर में एक अनीमर बहुत मीठा मीठा सपना देखत रहा मार्टिन लूथर किंग वेख में, और भैया ओमा जाई के 4 गो क्रिमिनल घुसल है पिस्तौल ले के भाई, और ई जो काबुल अंदर नहीं मर रहा है यहाँ बतावे है एगो फिर फेफ तक यार के आदमी है सेक्यू का नाम है, और देखे प्रोसेलिंग ओकर घर में मास्कर पहिर पहिर लुटेरा बा, और एक से पूछे एकर मुंह पे बिगी से एगो कपड़ा अन द ओफर फ्रॉम प्लास एंड दुक ओफर एंड होफ, और ओकर हाथ सबन टायर व्रप से बांध दी से और बांध के पूछे पैसा कहाँ है, और ई भैया काबुल अंदर नहीं मर जो रहा उन ना मांगे बतावे वेखर करे पैसा बतावे के जो उलकवाए रहा मैं इतना मार खाई से दमिया की एक कबूले के परगे की पैसों कहाँ लुकवेली है मौसी, तो ई मार ओके मारी से भैया कि इतना क्लाक करे बोलो कर दी भर पिरा है हमारे नानी, और बोले हम पैसा प्लाफोन में लुकवेली ना फ्लीरिंग पे लुकवेली भैया, बोले फ्लीरिंग पे पैसा लुकवे बोले जा ले ले अमा हम में अपना मार नहीं खनन तुम्हें तक दर्जन अमेरिकन से डॉलर भाई जो यरमिया प्लाफोन पे लुकवाए रहा, बोले दारनास मार्क्टन से 4,000 सुरिनाम से डॉलर जो रुकर जेबी में रहा ओह ले ले से मोबाइल टेलीफोन लेके, और सब रूफर्स पेल भागल भैया होते इनके सिपाही अब का करे है गैल है 4 गो के खोजे कब में आशा पाएगा कब में आशा पाई भैया तू जाने हैं, जो चला गया बस उसे तुम भूल जा ऐसे बतिया है। तो अंदर नहीं मर लोन भैया इतना पैसा काहे धरे है कि अंदर बंक पे उस के सीकर है जैसे ना भाई कि हम में डॉलरवा काम लगी तो हम जाई के डॉलरवा फिर ले सकेला

राम। तो यहां पे भी आप लोग को हम बताएंगे और आगे कैसे है ए बांसुरी नाम के का करे भैया। उ सब हुआ के रखेने मांगे हैं कि जितना आदमी नीदरलैंडर सहीगा जोन पैसा हुआ धरी से उस सब आदमी के प्रॉब्लम में डाले भैया। अभी इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या होता है सूरीनाम देश में। तो जोन जोन आदमी सूरीनाम में पैसा धरे है उस सब के एगो बड़का प्रॉब्लम है भाई। अभी आप लोग को हम इसका न्यूज के बारे में बताएंगे कि रखेरी वहाँ पर कौन कौन कौन कौन वहाँ पर काम को करना चाहते हैं कि नीदरलैंडर्स के जेके हुआ बैंक है दस मूल खान माकम मिथुन मिथुन खेल्ट मैन से और सबके रिकनिंग चाहेगा का बोले कि ऑफ हेव कर नीदरलैंडर्स में सूरीनाम से बैंक रिकनिंग क्रेखन उ है अने फनाफ 2007 में स्ट्रेंगर रीगल्स भाई। तो अगर आपको सूरीनाम देश में पैसा वहाँ बैंक पे है प्रॉब्लम आज दे लेस में से बोले नीदरलैंडर्स और यूरोपिया के आदमी के जितना बैंक रिकरिंग सरनाम में बा 11 तारीख जनवरी से हैब सत माकंत क्रेक में न्यू एयू बैंक रिकल्स नवा यूरोपीय से रिकल्स रब के आयल है बोले दर बतीक नीड दैट रिकरिंग ऑटोमेटिस वर्ड कसलोटन ऑफ दैट इट फॉरबोडन वर्ड ऑफ खेल बेसिस नाम से बैंक ते हैबन द फ्रांडरिंग राग फॉर ऑल द मनीर waarop banken buiten de Europese Unie hun diensten aan klanten in Nederland mogen aanbieden. Ki dusar kam usap kari tolon jano dheer admi bhaiya hiya balasting na mange bhare. Ta jai ke hua bank khol ke pa paiso hua koro rakam dhare ba tab Europa muilak kare hai. Ta bole Suriname se banken fallen under the regels for landen buiten Europa. Suriname geld binnen deze regelgeving als een zogenaamd derde land. 2027 met januari ze bolega voor op or jabbers aanscherp kari banken uit zeker landen een dienst in Nederland mogen aanbieden bolle de Nederlandse regels vloeien vooruit de Europese richtlijnen. De diensten zoals betaal- en spaarrekening, leningen en andere producten kan een buitenlandse bank in bepaalde gevallen een vergunning en bijkantoor in Nederland nodig hebben. De verplichtingen liggen daarom in de eerste plaats bij de bank en niet bij de Nederlandse klant. Een Surinaamse rekening houden, aanhouden, wordt dus niet eens strafbaar. तो ये बात है बड़ी बड़ी बात है दिस पे अलमाल आदमी लोन अपन पैसा जाए जाए आदमी के ताशिशाल दिन में काम उम ना करे भैया और जाए जाए श्री नाम के बैंक में धल ले रहे और यहाँ के रखी नहीं ना जान पावे तू कितना पैसा बैंक में धल ले है और आदमी खा शिशाल साख के पैसा और कितना आदमी वहाँ पे ढेर ढेर पैसा धरी से और बला सिंह यहाँ ना भरे एंड वेल देश नीदरलैंड यूरोपी से इस सब चीज के बारे में अब जाए जान जाए भैया तत्ते वी का से मार तेवी का समझना है भैया स्वागरी तेवी का जाने तो तरेख वेरकन द क्रक से मारेगा तू जाने नीदरलैंड कौन ची भैया उज तोर उंगरी पकड़ेगा तो तुके जितना नहीं मके रोवा सब गिन ढाड़ीगा निकिया ढाड़ी इसी नाम है ना भाई जो तुके हमारी रिकनिंग है और सब जान जाए तो के रिकनिंग है और तू दौड़ ना दे ले हैप्पी एंड मी का करो तो प्रॉब्लम वी ना दे दा तुम अ न्यू रिकनिंग ओपन कान इन अंदर पोसिशन तरह कोमन अ बलंगरे uitstring wanneer een klant volledig uit eigen beweging naar Surinaamse bank benadert binnen bolle woonplaats belangrijker hij dan Nederlandse paspoort ha. Ook de woonplaats maakt veel verschil ego Nederlander die daadwerkelijk Paramaribo met jou rehe hij bank bankiert valt niet alleen vanwege zijn Nederlandse paspoort onder dezelfde regels als iemand die in Amsterdam woont. Metlap ki tu hua rehe baate to ke Nederlandse paspoort ba tu hier na eens geschreven baate tu hua rehe hai dan is het niks aan de hand mensen. Maar je tu hua na rehe au tu rehe Amsterdam me paisa hua dhalle baate dan heb je een probleem. De Europese regels richting
en richten zich op dienstverlenging aan klanten die zich binnen de Europese Unie bevinden of daar gevestigd zijn. Dus toen je Europa maar te tour gaat geldig, maar toch een Nederlandse paspoort uit de Suriname mee. Dat is niks aan de hand. Voor de Surinaamse banken kan dat betekenen dat ze Nederlandse woonadressen scherper gaan controleren, extra vragen stellen aan nieuwe klanten of besluiten bepaalde producten niet langer actief in Nederland aan te bieden. Bolle daarom, Kjaratarik januari 2027 mee, geen automatische sluitingsdatum is. De uiterlijke gevolgen hangen af van wanneer de rekening is geopend, waar de klant werkelijk woont en hoe de bank de klantrelatie na invoering van de nieuwe regels organiseert. Toen hebben we hier nieuws te zijn mee. Toen ik heb betaald, ik ben behoorde ik hoe aan mijn paisa bhaiya. Dat er die jant kariyo kya kariyo kariyo ka chaman jab khilta hai.

अंगूर थोड़ा गोरा लगता है, तो कभी काला लगता है, तो कभी उज्जल लगता है, लेकिन लगता तो है, वो बात है हमारी जनता।

0: हमारे दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं। सूरीनाम के लोग और सूरीनाम के लोग और नीदरलैंड के लोग के भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि खाई कोई बनाइयो भैया चूल्हा पे या खास पे या जोंची पे अपना खाना तैयार करते हैं तो वहाँ पर बैठ कर देखना कि खाना कैसे होता है, ना कि हड़िया में तेल डाल के और सूत जाइए भाई। उस सूते वाला समय ना है, सूते वाला समय रात के रहे है नहीं दिन के। अपने एगो देचा मान लियो लेकिन ना खाई बनाइयो तब जइयो। कहा बोले हे खाई बनावट में सूझ जइयो। अब ये बात हो रहा है हमारा सूरीनाम के देश के ओर हम जाए भैया। तो एक घर है फ्रांबोस वेख में, तो शनिचर आतवार के दरियन दिनों ऑगस्टस के मानचित हो रहा है। तो वहाँ पर मौसी तेल डाल के हड़िया में अपगोरे तेलवा गरमाई, इतरे में घर तेल अबे ना गरमान है और मौसी सूत गे भैया। मौसी सूत गे, मौसा के पता ना कहाँ है। अब जब मौसी जगल है भाई तो तेल जो रहा हड़िया समेत खास फोर नाइस पर से नीचे गिर गए है। जब गिरल है तब मौसी के आँखी खुलल है। पहले जब गिरल है तब मौसी के आँखी खुलल कि अरे कौन ची गिरल है। तब मौसी कांडे के कुकरू में पकड़ ली से जबरदस्त आग भाई। हाँ आग लग गए है। तो बरांतवेर के आवत आवत का और आगी सब भस्म कर दे इसे घर के भाई। जितना इन बुदल ला सब दोन फोड़ बरांतवेर बोले है, बोले इतना फर हेतन फन ओली तुन है तेज द वक्तन इन स्लाप फील ऑफ गेफत मोमेंट फत हेड खार फॉर माई फ्लम वन हेड फ्यू सिक्स नल एड ब्रेड एंड ओवर सुंग दन रेस्ट फ्रॉम द वोनिंग। अब पकड़ ले भैया वो आगे लग गए हैं। और बताई गई है घर वहाँ में एगो ईटा के घर रहा 3 मीटर बे 8 मीटर बड़का घर रहा। तब वो मैं से जे माँ इलेक्ट्रिसिटी नेट फन ABS की व्यू में रहा बाकी घर वहाँ ब्रांत फर्सी कर ना रहा भाई। सोचो बड़ा महंगा ओंहा उनका बोले सपना रहा है भैया तू सूद गए ले तुर घर फर्सी करना है और तू ना ख्याल कह बैर ब्रांत दे दिन से खीन पसोल का ओंखल के नतीले मैं से ABS एंड सूरीनाम से पुलिसी वारन इवन इंस्टर प्लेट्स। और एक बारे में बेचारा मौसी लोग के जेकर घर जरेले बड़ी दुख के बात है। हमारी जनता बहुत दुख के बात है। आप लोग के पता भैया एगो फिल्म मार्कर हैगा रोडनी लाइसनर और ये लाश हो गए सूरीनाम देश में भैया। हाँ सूरीनाम देश में लाश हो गए है 15 तारीख अगस्त से। और ओके सबन बहुत खोजे जेकर ऊपर सबन धरी से बोले हैगा 10,000 पैसा हम लोग तो के देबे एरो। बोले कोई बता दे कि रोदनी कहाँ है। तो सोंदक 23 अगस्त स्टार द टेलर ऑफ 9,865 एरो बै एन गब्राक दोर 163 डोनाची। और बोले है uiteindelijk schreef bedrag van inzamelingsactie van 30.000 van Dries Vaya ki je bata dewe Jeremia kahan bole 30.000 euro hum lon to ke debe aur bole ke koi batawe na family opgezegd via an GoFundMe bole humme khojo bole hega met het geld wil de familie extra mogelijkheid creëren om Rodney te vinden en meer duidelijkheid te krijgen over wat er met hem is gebeurd mensen aur ke sab khoje hai film maker hega aur bataye gaye hega insamel bedrag ko 30,000 hui hai Rodney ke bole ke for information the too late ki Rodney abhi jinda hai loud yaar will the family med lona se professionele juridische bijstand en advocatenkosten in Suriname indien noodzakelijk in Nederland betalen ook andere uitgaven die rechtstreeks verband houden met het vinden van Rodney kunnen uit de opbrengst worden bekostigd. Bole koi bata dewe kahan hai te bole hamlo sab kosten to ke hamlo bharab Een familie maakt duidelijk niet te willen afwachten en naar eigen zeggen geen enkele mogelijkheid onbenut te willen laten. Op palwaar Sochaiki Kahamba, Kahamba, of verblijf van Rodney. Op het aanwezige palwaar bolehiga groundfundingspagina updates geven over de zoektocht en besteding van het inzamelijke geld. Maar ik er waarin mee heb ik iets patana hai bhaiya. Yahan bataya gaya ki itra paisa dhari se. Lekin bhai ik er gaadi milal hai nani. Ik er auto milal ego swampu me. Ego swampu me ik er auto milal hai sarmakka me bhai. सरमक्का मिलल है एकर ओतो एकदम जराई के सब भसम कर दे रहा ये रोटनी लाइसनर जो ने 25 तक यार रहेगा और बोले दर बफेस्कन ब्रोन रोंडोम है अंडरसुक अंदर गोरस पुलिसी फुरते के सब चेक करी से तो बोले हैगा अनवेशक फन ओतो बोले किया सुरेंटो है और यह कहते हैं कि नंबर भी लिख ले कि ओ ही को तो हुआ जरल है और शाशी नंबर में सब क्लॉप हुए है कि रोटनिक ओतो है बोले सनिचर के 15 तारीख ऑगस्टस के सेन वूनिंग 15 तारीख ऑगस्टस गेल है तब से एकर एक को स्पोर ना है कहां है और कहां ना है सुरिनाम देश के बाद बतियाए ला भैया तो एकर बारे में सिपाही चार को फरदाख्त के पकड़ी से सन्ना में और बोले बन करी सेगा और बोले तरवेल अफीर द फरदाख्त अबे भगल है बोले ओन द अनखोन फरदाख्तन बफिन सिख ना क्यूबांस एक्ट बारे को क्यूबा के चार मिला में से दुई परानी है क्यूबा के बोले द फीर द फरदाख्त इज रायन टी बोले एक्स पार्टनर हैगा जो हेड के सीईओ फन रुडिसा के हैगा और बोले हैगा द पुलिस द verschillende huidige CEO van Ruzida. तो ये क्या भैया रुसिदा कौन ची हम जाने लगो बदरायफ है सुरिनाम में रुसिदा लेकिन मालूम ना है कौन ची है रुसिदा और सुरिनाम देश के बातचीत हो रहा है बताए गए है और रुसिदा के बारे में ना लिखल है कि कौन बदरायफ की ऊपर द लीडिंग फॉर रुदिसा वो दूसरा भैया और ये दूसरा चीज है तो जैसे रहेगा आप लोग को जब एक चीज के हम में 100% ना है तो हम ना बोले सीईओ फन रुदिसा लिखल है बोले पॉलिसी फर्स्टकेलन द एड्रेस पे गईल है और त्रासेर करे है और इस सबके बोले फॉर अस नो बोले एगो भगल है और बोले अब बेलाइसनर के पता ना है ओकर एगो स्पोर्ट ना हो कहां है भाई बोले हैगा द पॉलिसी हाउ ट्रेकिंग में द मिस ड्राइव en roep personen met informatie over zijn vermissing of zich te vermelden. Obolega Leisner is in Nederland bekend als filmproducent en is in Suriname werkzaam als directielid van Rudisa NV. De directielid hega Rudisa NV, ke bhaiya, ha, ab samajh li. Ego bedrijf hai Suriname ke film producer mange Suriname mein kaam kare hai Rudisa NV ke bare mein aur Rudisa NV ego bedrijf hai Connected Global Brands likhal hai aur bataye gaye hega यहां पर ये बदरई फॉर कौन बदरई फॉर दोस्तों सुरिनाम में के हुआ डायरेक्सी में ये काम करे है और ये लाश हुई गए भैया तो कैसे मिलेगा कैसे ना मिलेगा बस इंतजार ही करना एक फिर सस्तक यार के आदमी भैया जहल में रहा 22 तारीख अगस्त में सब एक मरले पाई से तो बोले जॉनी कोंची करी से ई फिनस तक यार के आदमी भैया 10 बरिस के एगो लड़की के जब उस लड़कवा 60 बरिस से रहा तो 60 बरिस से 9 बरिस तक ओके मिस ब्रेक करी सेगा ई फिनस तक यार करमिया और बोले फरतोन द टाइम सेल कंट्रोल हिन टेकर फॉर लीवर मेयर आर्स बोले मर गए हैं एक 21 अप्रैल फन इट लोपेंड द यार अपस्पोर्ट फॉर एरस्टक सेडन डिलेक्टन गप्लेक इन डिस्ट्रिक्ट ब्रोकोपोंडन फरमारी भूमि कल रहा और बोले आइट एन अंडरसुक इज ना फोर गकोमन दैट द प्लेग मदर फन मेंशन ओ रेगुलर मात हेडन हैड ऑन केन ऑन डेट bij de geslachtsdeel van een minderjarige kind, waardoor het meisje de handelingen van de man kenbaar maakte aan de moeder, die vervolgens direct aangifte kreeg als hij bij hem heeft. Toen ik heb pakken gebankeleer, bhaiya, jahle na kalbe jahliye mire miya, ke raam naam sat hoige nani, itra paap kariyo bhaiya. Te bole tu chala ao, bole hege openbare ministerie werd bij hangende onderzoek in verzekering gesteld. Een cel en huis, sipahi me bankalera politiebureau centrum me, 22 augustus kenim ya marle paral he, so onsilde lichaam dat in opdracht openbaar me patana bhaiya, jaliya mokalaik milal tu jane isab chit ki jahal me tu jaiye kare. जहल में जहल जइयो और लड़कन फड़कन के तू मिसब्राइड कर ले बाटे तचा बहन तो के सो मार हुआ ना छोड़े है भैया सिपाही से ज्यादा तो हुआ के जहलीवन तो के में सांदल कर डाड़े वह बदित आन पार के रे खसीन आप लोग जानो है निकेरी से फेरवा बुटिया जोन जा है गया ना तो जगहिया का नाम काना वाइमा भैया तो फेर बोट हबड़ा हुए गयाना से निकेरी निकेरी से गयाना जा है और भैया ओके खुद क्योर चाही हुए के तो पांच गो पिंतक खातिन सबन गईल है और काबल खुद क्योर करे की बोटिया उड़ सके मतलब की हबड़ा हो ही सके की ना तो अब अंदर सुख बोलेगा मास के वेदना से उन्हों फंक लगे इंस्पेक्टर इन खसकाकल और बोलेगा पांच गो हुफ पिंतन जो रहे हैगा बोले हमार तो सब मोई रहा बतावे है मोई रहा बतावे है काना वाइवा वेरी शेरफीस के बोले है बोले कमिसारस जो नहीं का जेमस अंगुलाल बोले है फैल खैस मात्री बोले अइटफूर बोले हमार तो सब मोई रहा मार बिलीव अन फॉर्मूला ट्रिक कोपलिंग नाने इन हर इंस्पेक्शन आई बोले बतावे हर किंग ओंदन में ब्रांड फेल खेत रहा रूप मेल्दक रहा एर अंदर मात्री इन ओमेद रिशिको अब ब्रांड बेपरकन ओक मुस्तन सर्टिफिकेटर फन भमानिंग वार्डन आन खलीफर्द अब बोले सब कुछ मोई रहा मा बोले हमें उस सब कुछ ना बोली अब बोले हम अपन बोले हमार तो सब मोई तो बोले हम बोटिया चलावत रही बोले आदमी लोग जाए हबड़ा बोले अचित्ते में बोले कागज आई के गिर रहे कि तो के बोटिया ना माँ के फेरवा हबड़ा करे के गयाना से निकेरी अपने अंदर सोम तब बोले द खसरांद पशासीस हर फारबूत En hij heeft directe gevolgen voor reizigers tussen Suriname en Guyana. Probeerde daarom dispensatie te krijgen voor de afgelopen weekend. Zodat gestrande passagiers alsnog konden worden vervoerd. Er zijn mensen die daar gestrand en we willen die mensen helpen. Is ze wat Angola bolle bhaiya. Hij wijst erop met ieder reiziger voor voldoende financiële middelen beschikt om gebruik te maken van de alternatieve vervoersmogelijkheden. Maar bole ki, bole se botia toke na mag chalaika, bole de president commissaris, bole ik er bare mee, bole weer voorzitter om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Baki bole hem mee kuch na bole te bole hem te sochi, hem chalai se kila botia. De boot aise thoro chale bhaiya kaga chaga chho ja, ma tu jane Sri Ram me sab rekening na hori kare bhai. कि हुआ आदमी फिर बोट के स्ट्रांड भाई ले उस सब अपन टाइट लेके सब कुछ करे है ओके नेक्स्ट मांग के हफ्ता भर तुर बोट बुड़ल है कि उतरान है तो ये बातचीत है हमारे दोस्तों हमारे प्यारे प्यारे जनता भैया हम जाए हनीस मनोरथ के इतना चोर लुटेड़ा है बाकी भैया उसी पाई लड़कन के पकड़े जो ई बाइक्स चलावे हम जाने ला ओहो कमुआ चाहे होवे के मैया छोट छोट लड़कन दुई गो अपन ई बाइक्स चलावे है ये मनोरथ बड़े यंग केंद्र ई बाइक्स वार्डन फन द वे हाल छोटा छोटा लड़कन के नमाक दैट क्लब मेन से दैट इज सीकर खुद मने मनोरथ मार हु से तद मैं द रूफ फन ऑन सेंचुरी नाम भैया मनोरथ Benodigd van Justitie Veiligheid doet een dringend beroep op de ouders om kinderen van 8 tot 12 jaar niet met een e-bike de openbare weg op te sturen, mensen. Het is veel te gevaarlijk. Dat zeg ik ook, mensen. Daar heeft hij me nodig. Of de minister helemaal gelijk. Extra politiecontrole de regen tijdens vakantieperiode. Bollehege aandacht, veiligheid voor de recreaties. Ja, pesep, ja, pauwe. Lerken ke op een mooie zitten doen. Kjalkerio, bhaiya. Dat ben ik helemaal eens met meneer de minister. Ik ben kritisch, maar waar gelijk is, ga ik ook gelijk geven. पांच को भैया क्वाटा में इनफाल करी से सिपाही पांच मिला के पकड़ी से 21 augustus के पकड़ी से भैया क्वाटा में पकड़ी से नानी और गल पता मिलल है ड्रग्स पिस्तौल वापन बड़का बड़का सब मिलल है और हमारा देश का माफिया होएगे का भैया मनोरथ तेज इनफॉल से फेफ verdachten met verschillende buitenlandse nationaliteiten aangehouden vuurwapens aangetroffen beslag genomen uit drugs via criminele organisatie Een van hen zou in Brazilië worden gezocht vanwege ernstige criminele activiteiten. De ego Braziliaan ke to pakar ke bankal le raha. Aur usko tu oke chhodwaade is bhaiya raat ke oke forflukh kar deisega. O criminele bende ke raha. To pehle hamar sipahi ke chahi kaida sikhe ke. Ki choran mafia log ke na chhodai hum. Wahan to dono sipahiya band raha okar bare mein phir se kuch na likhle janta. Nederland koor hem jij bij droogte naar buien iets afgenomen maatregelen langzaam afgebouwd. Bij jura raha Nederland me bij jij ki pani ani tarkari ke na makhara siche ke. Au bole dhire dhire jurua ab ja hai. Afgelopen week iets afgenomen. Bole effecten zoals versilting aantal plaatsen af en toe kunnen enkele maatregelen geleidelijk worden afgebouwd. Staat in werkelijkheid droogmonitor van Rijkswaterstaat Kalerha. Het herstel van de waterstand kan wel nog weken, nog tot maanden duren. De gevallen neerslag bij vooral verlichting in Zeeland en de hoger gelegen delen van Nederland. Op bollehega risico raha. Bollehega maar alertheid blijft geboden. Risico hierop wel groot blijft. Dat komt door de nog beperkte aanvoer vanuit de rivieren in combinatie met de wind. Te willen op maatregelen door aan willen worden mogelijk afgebouwd kunnen worden. Wel blijft je verbod op oppompen van oppervlaktewater en grondwater of veel plasten voorlopig nog van kracht. John Bolega, John Saban. Deer pani Saban oppompen kare oppervlaktewater en grondwater op veel plaatsen voorlopig nog van kracht. Maar barka barcelle dosto. तो ये बात है अब वे वेल फॉरबोडन है तो हमारी जनता हम और आगे अपना प्रोग्राम को लेकर जाते हैं और आपको सुनाते हैं हाइटी में भैया हाइटी में हां हाइटी में भैया बहुत भगदड़ मचल है 30 आदमी मर गए हैं देर तक दौदन मरल है मेने फर्क पर क्रिसिन फॉर ब्राइडिंग इस समय वहां पर किसिंग हुई और हुआ पर भैया भगदर मचल है फन इंटरेस्टिंग आउटबर्स्टिंग फॉर गवेल्ड Minstens 30 admi moral hega, hoofd ter Port af Prins mee. Deze aanval uitgevoerd door een krachtige coalitie van bendes, coalitieke benden kregen, vond plaats in een tijd waarin het lang zich voorbereid op de eerste algemene verkiezing in meer dan 10 jaar. Dus wat is nou verkiezing? Heel op dus wat is gebaard mee? Op verkiezing wil nog wat dagen wel heel veel via. Bullen de bendes ongeveer 70% in de poort. Op Prins gebaard. Bullen ligging bij uitzetting van de toewensing van de. Op bullen ondanks Amerika. Anti-bende eenheid die op termijn van 5500 leden moet tellen. Blijft het moeilijk om de orde te stellen. 1,5 miljoen mensen in het hele land geweld houdt aan ondanks internationale spanning met meer dan 3100 doden. Ruim Gyara zou het niet chotaige hebben. Of bole autoriteit, bole regering, bole hebben. Zonder zwakte en zonder uitstel worden hersteld. Dus op hoi ki na hoi, hamari janta. Lekin ye sab achha cheez na hoi Guyana mein. हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के हॉलैंड के जनता। तो हम आते हैं चुनरे चुनर के बाद में, हम आप लोग को एक गीत को सुनातेंगे और सुनाने के बाद क्या होगा, तो कौन सा गाना हम आप लोग को सुनाएं, जरा सुना जाए।
1: कि

और प्यारी करकिरी खुना दोस्तों एक दो समाचार और हम आप लोग को सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा समय आ चुका है बंद करने में। तो हम चलते हैं दोस्तों सुरीनाम में भैया, इसे कोई गैल भैया एक गाड़ी गैल है शिकार खेले गैल है बेनलांत में एगो इशू डी मैक्स के लेके इस ऑटो में से ना उतरल थक गए जा तो में सुतले रहा भाई, सब ऑटो में सुतले रहा और उतरे में भैया बंदूक दगल है ना इस सब कोई के दूसर कोई इस सब के दागी से बातचीत हो रहा है बीता ग्रोन में भाई और एक मिला तो हुआ में बैठल ओके जाय के ओकर चेहरा पे लाई लगल है और ओकर पजड़ी में भैया रेबा में लगल है। तो इस सब ओ तो और एगो जंगल में घुसल ला शिकारी यही सब के लेकिन जो घुसल ला ओके इस सब छोड़ के गए है और डायरेक्ट गए अनखिफ्त करके शिकन हैस में के लेके वहां एकर देही में से खून निकलता भैया तेर हुक तो फन से मोन एर आन से रेक्टलक सही दे फन दे रेबन कास और बोले फॉर नोमन वाटर डर तक jarige MK met de ICCU DMX bij de politie Sandré arriveerde over een verklaring kreeg die ook een vriend MG en twee vrienden was gaan jagen. Het gezelschap arriveerde rond 22 uur ter hoogte van de brug van Bitagron. Op het eigen het dusser gwaadi wole pas bhail he. Te is heb keo toe wapet dagi se bhaiya hiya batai gaye he. Wole toen se wakker we zag se dat haar vriend in de auto gewond was gera. Het bleek schotwonden in te hebben opgelopen. Wole de vrouw kon niet aangeven hoe de schotwonden precies worden ontstaan en evenmin door wie haar vriend was beschoten. Ik hoorde het wie ze plegen. Volgens haar zou de slachtoffer zelf met duidelijkheid te willen hingen. Een slachtoffer werd bij een academisch leger. Ze van oké. Op het aanwege voertuig terug in de richting van de politie voor Sandré. De man die eerder het bos was ingegaan om te jagen werd daarbij in de bos achtergelaten. Toen betaalde hij bijna kijk een dusser gaadie pas op te willen. Oe sab dagie se. तो हमारी जनता आप लोग को हम यही समाचार आपको देते हैं और यहाँ तक था हमारा देश और विदेश का समाचार जो आप लोग के लिए हमने सुना दिए हैं।

और दोस्तों, तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे अमीर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती। और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमीन पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

ही देंगे। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे।

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचने स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते, यो गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और क्या है।

वो नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। आमदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

प्रिय अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नेखंतीन्द्रियन तख्तका। ये फिल्म है दोस्तों और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तीन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीफन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

हाँ, हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9

आंच का जोंग है और ये है फिल्म का नाम है मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशा बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए. और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाइटिंग लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

और ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमा श्री मोहम्मद रवि मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं, तो हम चलते हैं कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो मैं मुकेश की आवाज में

Howard, the heart of the millions, Mukesh, मूवी के नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगती हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

पीछे दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बो बो बो बोलो हाय बोतल में बंद जवा।

0: अब दरवाजा खोलो। राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो। बोतल में बंद जवानी फरमान श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है। दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत जिसमें जी प्रदीप भी इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

जब दिन हसीने दिल हो जवान, पद्मा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है। तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी हो हम भी है, तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टाइल 1958 का, पद्माश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

है तो चले आओ। तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है। तो ये हम आपको सुनाते, किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया यू ही नहीं पूरा है जाता है इक्ष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी का नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जी लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

ए तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूफी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं, आओ फिर प्यार करें, इसे कुछ लिखा है दोस्तों। और आओ प्यार करो यहां पर लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

क्या आपको मालूम है, आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारो, तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म के नाम है खल नायक। इसमें सोन ओ फिल्म मार इट इज हेल मोई नंबर लात वे दी ओक खान ड्राई फॉर द मेंस दी नाम नीट अलेन ओ नंबर्स मान ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

हल्की में होके सवार चली रही। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है परमा श्रीमाम रफी आओ नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे ये ही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निकति होंडेड एंड फिनेस अस्तका। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

गले लग जाना लग जा गले तो फिर ये मुलाकात हो ना हो। नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी और ये गीत जो है। दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमात श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। निखत इन होंदत एन फिर से अस्तक मेंजे, मैं निगाहें तेरी चेहरे से। परमाश्री मोहम्मद रफी एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों, और मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

ये भी एक मस्त बड़ी सॉन्ग है, फिल्म के नाम है फागुन, 1958 का, was ik nog niet in geboren mensen, maar het is een ontzettend mooie liedje van Padmashri Mohammed Rafi aur Asha ji ka hai, इसमें मधुबाला भारत भूषण इस फिल्म में काम किया है, आओ मिलकर सुना जाए फॉर गीता जी।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाव में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी की सेवा की है भाई श्याम पूरन जी, उसे मैं हार्दिक से धन्यवाद कहती हूँ।

यहाँ पर सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, ओपनिंग सिलेक्शन तो अभी आप सुन चुके हैं और चलिए एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे राम राम भज राम राम, और ये तो सच्चे सुनने वालों, राम से बड़ा है राम का नाम। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको एक सुंदर सा गीत सुनाने वाले हैं, और इसमें बहुत रस है सुनने वालों।

किस पर करे गुमान बंदे किस पर करे गुमान, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी साहब जी आपको सुनाने वाले थे। और ये तो सच्चाई है सुनने वालों कि हम किस पर गुमान करें। आज हम हैं, कल नहीं है, और कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और गुमान करके न कभी किसी को कुछ मिला है और न ही मिलेगा सुनने वालों। और जीवन में भी कभी कभी इतनी कठिनाइयाँ आते हैं, कभी कभी इतनी मुश्किलात आते हैं कि लोग भटक जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और कभी कभी तो लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे करने से जो सब कुछ, यानी जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात है, सब कुछ हल हो जाता तो सभी कोई ऐसा ही करता। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते, सभी दुखी प्राणियों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों जीवन से न हार और जीने वाले, और जैसा मैंने अभी कहा है कि अगर हर एक मुश्किलात या जिस हालात में जितनी कठिनाइयां में आप है, अगर उसका हल यही होता कि लोग खुदकुशी कर लेते और अपने आप को हानि पहुंचाते, तो सभी को ऐसा करता। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी ज़िंदगी ठहरती है। तो ये जब जब ये दोनों चीज़ आगे बढ़ते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। सुनने वालों, एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको सुनाने वाले हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। और ये गीत हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी इज्जत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

सुनने वालों, अभी अभी एक तार आया है हमारे प्रोग्राम में और माता जी ने तार किए थे और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा से बात किया और अपनी समस्या सामने लाई और उसका रिएक्शन जो थी, यानी उसकी रिएक्शन जो थी वो बहुत बढ़िया था और ये हम लोगों को एक पुश देता है, ताकत देती है कि हम लोग आगे

बढ़े अपने प्रोग्राम से और अपनी ज़िंदगी में भी। और हम माता जी को हार्दिक से धन्यवाद कहते हैं। क्यों हम इस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं? क्योंकि उनमें यानी उसे मुझ पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने मुझे तार किया और अपने दिल की बात कह दी। थैंक यू वेरी मच, यानी धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक गीत यानी ये भी मुझे बेहद पसंद है। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सुनने वालों, एक पते की बात बताओ, सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब से एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। ये तो सच है सुनने वालों, अगर आप कड़वा बोली बोलेंगे तो भी आपने सुने हैं ना, वो लगते हैं जैसे एक बंदूक की गोली और उसे कुछ नहीं हासिल होगा। फ्रॉम द मूवी यानी फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी से हमने ये गीत चलाए हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के।
1: नजर वो जो

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झुमके। इसी फिल्म से हमने पेश किए है। और किसी को बुरा कहने से और बुरा सुनने से हम लोगों को क्या हासिल होगा? इशारों इशारों में दिल लेने वाले हैं।

इशारों इशारों में ये दिल लेने वाले फ्रॉम द मूवी कश्मीर की गली से भी आपने सुने हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

हम उससे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत तो इसी को कहते हैं।

देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। भी आप सुन रहे थे जी सुनने वालों, सुन रहे थे जी सुनने वालों। जी हाँ, बनारस है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पूरब से जब सूरज निकले।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, पूरब से जब सूरज निकले फ्रॉम द मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार न कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। फ्रॉम द मूवी सफ़र, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: आप सुन रहे थे हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब देव की नैया सामने थे किनारे। सुनने वालों, मैं आप सभी को कुछ बतलाना चाहती हूँ। एक गीत जो है, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। ये गीत मेरे दिल को छू जाता है सुनने वालों। और एक कॉन्सर्ट थी साउथ प्लान में 24 तारीख दिसंबर को, और ये गीत को गाए थे वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी। बहुत खूबसूरत से उन्होंने ये गीत को गाया है, तो चलिए ये ओरिजिनल हम मिलकर सुनते हैं।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। और जैसे मैंने आप सभी को बताए थे कि 24 तारीख को एक कॉन्सर्ट थी थिएटर साउथ प्लाइन में, तो वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी ने ये गीत को गाए थे, बहुत खूबसूरत थी। और आप सभी को भी पता होगा कि ये किसकी बेटी है, ये है राम नारायण शिवराम जी की बेटी। सजनवा बैरी हो गए हमार, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे सुनने वालों।